0: गाइस रुको,
1: अबे कॉल मर गया।
0: अबे हम सौ क्यों, मैच टूर्नामेंट के फाइनल सम्मेलन का डेट प्रीपोन हो गया।
1: कब?
0: तो कल।
2: फोन करेगा?
1: ऐसा प्लीज ना।

0: राम राम ओ नमस्कार रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा टीकाराम चौधरी सँग आरती चौधरी स्वागत बा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के समन्वयमा रेडियो टाइगर बर्दिया सिन्हा उत्पादन करल कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा प्रविधि मसेना सम्बन्धित मेरमेरिक जानकारी कृषक लाग ओ कृषक कर्तीलाई खेती प्रणालीमा ऐना समस्या प्रश्न जिज्ञासा कृषक हुकनके आशा अपेक्षा गुनासो सुझाव सुनकेन मेरमेरिक जानकारी देना उद्देश्य से यी कार्यक्रम सञ्चालन गरिलख हो।
1: यी कार्यक्रम महिनामा दुईचो हरेक महिना 1 गते ओ 15 गते सन्ध्याकै 7 बजे रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया ओस्तक अनलाइनमा tigerkhabar.com ओ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्र मसिफी सुन्ने सिक्दै
0: ओस्तकको रेडियो गिरभा एफएम 90.7 MHz शान्ति बजार ओ अनलाइनमा मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्र मसिफी सुन्न सिक्ने माथि कार्यक्रम के फेडोस र प्रसारण बिहान के 7 बजे सुन्न सिक्ने बाटी पुस्तकका 1.42 MHz के यो कार्यक्रम सुन्न सिक्ने बाटी कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र हो कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ हुकन सेना कृषक हुकन के आशा अपेक्षा व गुनासो तथा सुझाव के सम्बोधन एवं कृषि क्षेत्रका मेरमेरिक जानकारी प्रसारण गरिने बाटी
1: पशुपक्षी कन्के उत्पादन वृद्धि कैके कृषक समुदाय के आय आर्जन और जीवन स्तर उठाके देश भर के कृषि क्षेत्र के देहर उत्पादन बढ़ाई अनुसंधान मसी विकसित प्राविधिक प्रकाशन प्रसारण और अभिलेखीकरण कैके संचार माध्यम के प्रयोग मसी प्रसार प्रसार करती कृषक को सरोकार अलंकन संगना काम यी राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र के मुख्य उद्देश्य रह
0: जहाँ ग्रामीण समुदाय के मुख्य आय आर्जन के स्रोत कृषि पेशा रहल बा एक और ग्रामीण आय आर्जन के स्रोत कृषि क्षेत्र हुइलको कृषि सम्बन्धी प्रविधि ज्ञान सहज और सरल तरीका से न पुगेना परम्परागत प्रचार प्रसार के माध्यम उतना प्रभावकारी नहीं देखेलक अवस्थामा नवीनतम प्रविधि मसेन प्रचार प्रसार करकलाक आधुनिक तरीका से हाली हो झट्ट सूचना पुगेना सूचना प्रविधि हो संचार के माध्यम एकदम उपयोगी हुना देख पर्ना हुइलको से रेडियो टाइगर के सहकार्यमा यी कार्यक्रम प्रसारण हुइती बा
1: सूचना और संचार प्रविधि से कृषक हुन के आधुनिक खेती प्रणाली में निरव सिंचे समय में आवश्यक सूचना ज्ञान और सीख के पहुँच करा के उत्पादन बढ़ेना सघैना करना और समग्र कृषि विकास में खास भूमिका निर्वाह करल बा कृषक के खेती बारी में सब दिन जसिन कुछ न कुछ प्राविधिक समस्या देखा पड़ना हुईलक और से समाधान के सूचना और संचार प्रविधि के प्रयोग में से समय में समस्या के

0: हिल्बा, भारी वर्षा हुने समयमा दाना दिन, मच्छी छन्ना प्रजनन गर्न, ओ भुरा नर्सरी पोखरीमा सर्ना लगायतका काम कुछ समयका लाग ओ वर्षा रोकल पाछा सञ्चालन गर्न सुझाव देखिल्बा। बुलेटिन के अनुसार हिला ओ लेडो के कारण मच्छी मटना बरसेकना हिला पर्से 1.5 मिटर गहिराई हिला पोखरी म फिटकरी 10 से 12 केजी प्रति कठा के दरले प्रयोग गर सेकजिना उल्लेख गरिल्बा। फिटकरी प्रयोग गर्ल करिब 3 दिन पाछा पोखरी हो चर्य कोणमा पोटासियम प्रम ग्याङनेट प्रयोग गर्न ओ उपचार अर्गिलक मच्छी पोखरी म फिडो सहन छोड्ना से आग सावधानी अपनाए सुझाव देखिल्बा। भारी वर्षा पाछ प्राकृतिक आहार कम हुई सिक्ना हिलक होसे पोखरी म 15 दिन के फरकमा 10 से 15 केजी कम्पोस्ट मल धर्ना ओ युरिया ओ डिएपी प्रति कठा के दरले पानी गोलखन प्रयोग गर सुझाव देखिल्बा। मौसम सुधार हिल्पा छ, खैना मच्छी उत्पादन केला करिब 25% प्रोटिन युक्त सन्तुलित दाना शरीर के तल अनुसार दैनिक रूपमा भेग पर्ना ओ दाना सफा सुक्खा स्थानमा भण्डारण करक पर्ना बुलेटिनमा उल्लेख गरिल्बा। अष्टख माछा पालनमा उहिना जोखिम न्यूनीकरण केला किसान हुकन बिमा कर समेत सुझाव देखिल्बा।
1: मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो। कृषि तथा पशुपन्छी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क कार्यक्रम अर्नाउक र बुलेटिनके बारेमा जानकारी लिन सिक्ने बाटी।
2: कृषि औ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदके पैसा नलग्न नम्बर 11:35 हरेक सोमबार सन्ध्याके 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म फोन गर सिक्दै।
3: अब हाम्रो सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला हिल्बा हमार प्रश्न अपनक जवाब
0: आप पाला हिल्बा गैलक कार्यक्रम हाम्रो पुछलक प्रश्नक सही जवाब देना विषयमा हमा पुछल प्रश्नक सही जवाब हो असोज ओ कार्तिक महिना। आज कार्यक्रममा कोन विषयमा अन्तर्वार्ता लेगिल रह प्रश्न 103 आज कार्यक्रम कोन विषयमा अन्तर्वार्ता लेगिल रह
3: यी प्रश्नके उत्तर अपनाउँगर जङ्गलबाती कलसे 9858303961 आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसिन उत्तर पठाका सहभागी बन सिक्दी सही उत्तर पठैलक हुकनसे एक जहन गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रमके तरफसे 100 टी-शर्ट पौधा धन्यवाद।
0: यी प्रश्नक उत्तर ढेर जनसङ्घरे हुकर लेख पठाइल रह यी मध्ये मनसे एक जन गोला पठासे विजेता घोषणा करलबाती उहाँ हुई त ठाकुर बाबा नगरपालिका 5 वनवीर के विशाल दहित हार्दिक बधाई बा विशाल जी।
1: पुरस्कार के लाग अपना एक अठार भित्तर अपन परिचय खुल्ना काटले कन्ह टाइगर एफएम का कार्यालय मना सम्पर्क कर सिक्ने बाती।
2: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल पाछ अपन मनमा लागल विचार ओ कृषि खेती के विषयमा कोनो प्रश्न ओ जिज्ञासा हुइल कलेसे अपने हुक्र अपन फोन मसे कह सिक्ने बाटी ओ एसएमएस इमेल मसे फेर लेखे सिक्ने बाटी अपन जवाबमा विचार ओ प्रश्न धरकला कृषि अनुसन्धान परिषद के पैसा निलग्न फोन नम्बर 11:35 देलक निर्देशन के आधारमा रेकर्ड कर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर के सम्पर्क नम्बर 0 84 40 31 88 ओ मोबाइल नम्बर 9858303961 मा फोन कैक रेकर्ड कराई ओ लिखाई फिर सिक्ने बाटी पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com मा फिर अपन जिज्ञासा पठाई सिक्ने बाटी।
3: लिटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद के कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन हो। कृषि विज्ञ से लिखल सल्लाह सुझाव ऐना हप्ता में अपनाई सेक जिना कृषि संबंधी थ्योर जानकारी संग और मेरमेरी गतिविधि फैले का ऐना भाग मना ध्यान होने नहीं बात कार्यक्रम का ऐना भाग कना सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटी कना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरती ओ मैटी कारण फिना विदा बिटी राम राम नमस्कार।